0: Bejong Longchi Nyenchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen
1: Bejong Longchi Nyenchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen
2: Jache Senke Namba Ngana Bejong Longchi Nyenchen Le Kong Kamke Longchen Je Senta Chichi Le Chen Ge Gegen Lozang Nima Yin Tini Tal Hong Tui Goma Gana La Ta Nga Tsu Ge Tsu De Kang Hie Pari Sedi La Ta Shir Tsa Sanji Pa Ge Ta Nyu Ngi De La Tini Yaya Yigi Na Ya Hie Pa Tang Yosu Tsi Tri Jin Juba Hie Pa Sa Nyi Yo Pa Shi Tini Ta Yosu Tsi Tri Jin Juba Hie Pa De La Ta Tsi Tri Su Su Ge Tini Ta Ngo Tang Tini Jai Yosu Tang Tuen Ju Yosu La So Pa Tiso Nga Tsu Ngi Su Ma Hiu Pi Ngen La Tini ngen ro garamba de la Ta tsik chi ji goden dang Di jik dang yewa Tini nai ga goden dang Tini nai li jik dang yewa kanji yo pao Ta desu go gore ni Tini ngan su ga ta Ngo te ndor di ji tini Hontu goma nari shiba shi Tini te dang rel di ngan su san yi xia ji ga Chua sen go ye pari Tini di la ta nambal hen ji ga Pache desu go la Tini tu san yi yo ji shi Tini di la ta tangbo de kang re ye se di la Ta ngā tsō bē jō dā jibī wāng tā na chē tēlā chē rāwāng jīn tāng chē yāwāng jīn sē ā gā tēnē rīg nī yō pā rē sī tēn tēlā chē rāwāng jīn tā yāwāng jīn gā chē pā rā tē gāng gā gō nī jī gī pā rē sī ā tē trā tāng bō shī tēn tēlā tā chē rāwāng jīn tā yāwāng jīn sē ā tē rāwāng tā yāwāng yīn mē tē tsō chē tēnī yēr sā gā mī tā gā tēnī jīn jū tēlā tū gī tā mā gī tā tē gō nī chē pā rā jī gā rē sī ngānsu pēkī gā nāla tā chē rīk jī tē anī gāng duendē tā yār jī māyīn bā tsō tē chē rī jī na chē gāndrī jī tōtā mō tō tē chē rāñī yār sā gā anī mīng tī gā thār gā jīn jūk tā anī yāng jūk tē sō lā tī nī yār gī bā mā tō lā rāñī gāndī tā yā mō rō wā tē tā bā gā chē tē sō lā anī chē yāng jīn sā gī rī tēnē yāng chē rīk jī lā gōng tī xē bā nā yī jī tini ko yari ki miin taa tegi tini jinju la soba la ko tui mgi par ta kaang dede ko go ni ani yar chode pa tenze ka chi jiyo pa res dee ris jibi ka chi teso la ani chi rawang jen zeni wata tenze tani ka ki pa res dee indi la zo te ta jinju la tui gita mgi ti go ni ta chi rawang jen la yawang jibi chi par wate jigi pa tenze ji cha diyo res tini nimba de kaang re se na chi taang miin yin de ngāwā yīnā mēnsi ya tēshī chē tā mīnī nā ngāwā yīnā mēnsi ya tēshī tā ndē lā ngā tsū kāntrī chē kī kī rē sē dī lā shē tā ngā lā tā chē tā mīnī nā ngāwā yīn sē chē tā mīnī nā ngā kī bī jīnsēn chē rē sē dī lā chē sē yōn dī lā ndī kā sē lā ngā tsū cik chē chē sē yōn dī lā anī rāngī nī rāngjā pē yu kō nī tuē kōngō kō tsidō tāng yēr nā yēnē chēr sē dīlē anī kō kō tēng jī kō sāwar shē bā tēng kāyā rō wā kī sāwar shē bī kī tēng jī kō nībā dā dēng bī kī tēng jī kī dā chī lā ngā tō kō chē sā kī wā shē tēng dīlē chē yī nā kō rāngī nī tēng mā tē bā jī kī wā shē tā wē jā mīng sē yōn dīlē tā tā tā tē tā dō nā rā bō chā dī wā shē mīng yī nā tēng jī ngō zān tēng bī kī dā chī lā mīng sē wā yīn zā mīng yī nā rāngī nī kō tēng jī tēng kō wā shē tēng jī ngō zān nī pā rā tēng kō wā shē tēng jī ngō zān jī mā tē nā kō mīng chā mā shē Tēn yīndi lā, tā tēk tōtō lā ngānsu sāndō jī tāmbā yīn nā, anā chē tāng mīn yīndi anī ngā chā diyo rēs. Chē yīn nā kō mīn yīndi mē bāchī yī tāng, mīn yīn nā kō chē yīndi mē bāchī rē. Chua sāmbā tē kāng rē sē dī lā, tā rāng rē pē jī dā chē mā gā nā lā, anī nā yī tā mā dhāng yū bī kā sē lā, tā nā yī kā chāng kā dhāng tō tē lā, anī rīg mā dhā kāng rē yō rēs, ndē bā mā dhā kāng rē yō rēs anī, tēn rē chua chī hē kuay bā rē. Tā tē lā, anī nā yī dhūgyo parin dhēngkhen tāng, tēne nāi dhūndun dhēngkhen tāng, nāi jēdun dhēngkhen tē, shē tāng kālā ngā tsō rīksan rāpo yō parī. Tā nāi dhūn dhēngkhen tē sō lān tsō yō mā yī na, tsō tē chērē sē tīrī ngā tsō yōng rā rā tsā jī gā, nāi dāngbō sē yā, tā tēn jū ngō tsā tē bī gā mīng tē sō tē, tēne nāi ngī mā mā yī sē, tē sō nāi cēnī pā mā yī sē gā rā. Tēne nāi jē pā ngā tsō bē rā sē yā chū rā bē bā sē, tē kā sē lā jē tāng kā yī lā sō bā, tē sō bē bā sā jī gā rā tsā rā mā tō tē sō nāi ngī mā yī sē. Tēn tēl ngā tsō yōng rā kī xē jī gā nāi tāng bō tāng, nāi jī bā nī nāi tāk bā bā tsā mā tō lā, nāi cēnī pā yā nāi ngī mā tē mā yī sē, t ten de lo peke la nai ni ma da kase yo sa na nai du ma to me se ne o te che se ne de ba ji shi ten ne de ba ni ma de che se nai din yo ba de ba na nai din yo ba de ke de su te zo di ka re se ni la nai je ba be da te ni nai tang bo o kon sur ko de ba shi nai je ba te nai tang bo kon su din ni ani nai de e ma to ni ma jang wa ten ji yo ba re yang yin yo nai tang bo ten ju mo za ten ba se ya te nai nono ma zang ni ni ma zang ni ani nai ni ba sa ni ani nai je ba ma re pa ta le zu ti se la ani nai di ma to le me pa ten je gen den ke ya ri ji yo re ten le nai den den ke te la kon de to ma ra pa ji ni ra bu ji yong ge du ten ne nai je ba ne ke de ta yong ra ra bu te nai ta mo ten ni ngo za ten ba s ta na ni go zu de ani nai ni ba le sha wa nai sa ba she ja ye ba gyu che nga ban jung khung a tu ban re ja da ma ni yo a je ba be da se ni o ta to je po de che re na ani a nai constantine dangueur o tendi si payina atela ani tanga kchani ki payina dugda dinda jete atene ande to mandawa sunda bujindus o tate cherzna gong atene lotu ki nande dan jevi ge sahi jajik ne de zoti
3: tinju cema ma dei tinjin da lobu cimi shoju jijin da jiji cema ji bie longtin da singin cema nan la ga dun xia
4: zhe zhe la sang wu mi qi de li cong zhe li xie zhong zi qia ju jin da zhe ki bi yong lou bie chen de xuan zhe singin bu yi xi song bu
2: de ne da ga zi ba ba ang zu da a zu din de ge nong le xie ji de qi de zhen da gong chui qi de nan yi ge guo ni an ni ren ba yin de ma xie jin 다시탄칼랑아조 나의 코런 거 고된 조단 라서버 대속 토로 도서 먼저 왔대라 땡니 아니 나의 때라 마 정비까슬라 아니 공디 해봐 나이 나의 죽된 제선 아 나의 그 아니 남랑 때라 양 예바 먼저 봐 쉬고 되네 얘야 나의 땅 측체지 체바른 조수 거라 양 기바 소소로 도서 도서지 고마 이바 이다 먼저 왔던데 예 온게 열 때문에 자다 시차 있는 건 수지 상호지 땅 봐이나 시당 가는 건 조 배제 나의 그 거르지 나양데 अनि थेमे समोटाबा लासो बागता बेजे तनी दडीमा तेसोके जागर च डरीपी युनुज अनि नायक जदन याना नायक नाया तेला अनि को पेशिनी अनि जे जापा तेन चिन बात सेबोर जे दे वे जागर जे नाय जोतन देना बेजे नाय जोतन देनी दे नंबर कनि छला छ याबा मान यिनची कुरो या मे पान देनी जिबा चिजों जों रबो तेन चि चावानी ने युं ता मेबार जिनसेन छरे से दिल जागालन छोय माइना nāyān tājīna cīk, nāyān mēpā nā mīn sēni kō nāyān tā yāyū bīkāsā lā kō mīn mādēni kō cīk nā kīyō rī nāyān tājīna cīk, nāyān mēpā nā mīn sēni kīyō rī tēnzhā kō wāntā tā yāpā yīnā anē nāyān tāmbū sēyā tē kō mīn chāng tā māyīn bā kō rōng tēlā chīrī sēnā tōmō māyīn bā kā nāyān kā dhā sēnā rā chē sēnā rā nāyān kā jīn kō mī sēvā jī yāyū yōpā rī jāgā lō जे देवे जा रारे पेटा बलन छै बाइन अनि नय तंबो से दिसलो को छु ते येनी थमो माय बा को नंबर इया वर्ष बा नंबर जे वर्ष बा तंजे क जाय नि बा देबि को मी ओ मी ते का रंत नय तंबो रे या पर मातो अनि जागा न ये की को नय तंबो मी ते ला मिसे को नय जी चे दा ठे से आ तंजे सबा जी मे बा दर छै बाइन जे ना अनि जागा जे नय जो तो बे जी नय जो तो छला छ या बा ना ये की को जी बा जी जों तंजे जी ओन ते मे बा दे सिबो रे जिनसे तेला तेनी कारण दला ता सद पेंशन को मदि ठिन जिगनो कोन सुन योर सेदिर बेके जे नय तंगबो तं मिन चाला छपर मेबी सेनि वाता सिबो सिन सुन ना तो बेके जे वान ता नय तंबो ता अनि मिनि न छपा यो मारेस से गयो रे सेनि सद पेंशन तने सुन बार वा तो छरे सेदिर को मन जा जिस तने निबा जि छरे सेदिर योंडा नन सो गु ज जिग नय जेबा बेबास याना नय जेबा बेडास या दिस ta nai jeba beba yana beja ndala nga zo beje ngenche tene lo tsa chenpo nangka zangpo ta lo chen nangka zangpo ke
5: 간대지 순요레 세딜라 돔볼리스 마토피 제파 메파 히파 체데기 용 강리자 문중힌 베팔랑 당피 나엠 바히 데버히피 셔르 나예 제파 서튼 체 머리소스 와야 단더순요레 로진 난가잠복 데들 로진 난가잠복 수도는데 다블티 바인지나 나예 제파 베다세야 땡 아 아니 서틀로 코로 나예 지레 야나 아니 머리더스 then dig mundu segur dene indilo a nai jeba de chere se dilo ko sadal tini ko nai cheni ba chere magi par dene indilo ani sadaka ya ani beta ka ji che la so bande so de ko nai mares de so chere na pepa sa ji ga re se ni ta dene ko ri su yori tin indilo ta nai jeba de ji ko la yang nge che be ji tini draba se na mundu dati ma te su ji dati ma ga tan ki pa te su अनि यस मन्त बाटे मबो यो बार जेते तन दिकस हिन्दे बाटे छरी से दिल थेम सम्बोटा कोरन के जाम्बे के ता जावा संजु बा तंग तने जावा तंजु ओ तिन दिल संदा जे जावा कोरन या तुंग ना आ अनि नय जेन दे बाटे तोस जे तने कोंदा दे बाजी आ थेम के तने गोंबा तंग जिक बाजी थेम को गोंबा तंग थुबा तंग जे ए नास आ तने पाची जी इनसा रे सासा के तेरे को नॉन चिंदो ते जिंसन चले से दिल नांसो कौन दिखे बाना ये पहला नए जेयो बाना नए जो गर्म देशो यां अनि तांबो आ तनी तनी मोजा तें बाग मिंडा तनी निबा लिस्ट चास निबा शेडा ये बाग गिचे ने गोचु दे अनि जेबाम बेडा याना बेबा मारे का पार्ट को नए जो ठंडा नए जो गर्म छोमा दे तें दिले ता कौन सुबह तो गुनो लो तंबो दे कहाँ रे से दिले ता संजी पागे चाव करंस ता वो तो लगान सो मा अनि ये भी कसला यूंगेर ता संजी पागे चाव यूं रोंग नाला अनि चतान कल तातांग सो किया के नए जेब पे यूंगेर ता गुनो लो तंबो दे कहाँ रे से दिले संजी पागे नो लड़ो एक मा ये भी कसला मिंग कांग अनि मिंग्स याते निकसरता नै तंबो तक चरज नै तंबो द तेंगे रेस तने लादे जे कसला ली तंग्स याति ओया ली तंग्स या तिम कसला ली तंग कि बि ली से अन देके नै नि मा लिस यावत तेंगे रेस तने नै सबत अबला छै मा इंजना ता ओदेन जे कसला ता ओदेन दे शेरा नन रजा ओदेन मा हि बि कसला शेपा पोर से याति जुर तिम शेपा पोर हि बा तेगे नै सब शेरा दे तेंगे तने लादे जे कसला छे तंग से आ गयो छान रुबु छे देगे छे तंग से आ जावा गनो छिक देने जो छे की बा देगे नाई की बा गिशे दे देगे रिस तने जुंगकुंग ने बिकासला जुंगकुंग सा से आ छिक देगे तने नाई ngा बा जुंगो तो देंगे रिस तने या ओदे हे बिकासला अनि जेवी सा से आ जेवी सा से जो तने जेवी सा की बा देगे नाई तो बा डेरा दे देंगे तने लादे जिकासला तेनी तंग से आ तेनी से आ देगे नाई दबा देंगे तने चेजावानो बेपास या के चेजारवानो बेपास या निगे नै जिबा बेरक तें गयो अनि तो छमा दे चिरन ना आ सन्जि बा कुरंग जासि गनो न तें गयो ता तो खुंग जिस तने खुंग नि मा दे चिरन ना देवी जा खासा वार ता तो तांजु गनो न यस तांजु गनो न गांसु यो रे से दिल मिंता दे दा न्यु जि न दे न्यु रंग ग जातम बि छुनि लि दा शेबा दा जिन दा जुंग कुंग रेवा दा नि दा बेबी जायन दंग से या ओया दश तांजु को ता चासिस तेन दर ता दिग नो ना तेनि रंग जाते बि छुनि लिदांग हिप का छुनि से या दिगे नय तांबो देंग लिदांग से या दिगे लिदग नय निबास शेबा से या दिगे नय संबार जिन से या दिगे नय यबा जुंगो से या दिगे नय गाबा जवा से या दिगे नय दुबा नि से या दिगे नय दिबा बेबे जायन जांग हिप का बेबा से या दिगे नय जिबा देंग तेन दर नय जि तने ट्रंका कोरों द चीबी गोने तांजु के चाह को अनि सिबो चुने ठेंगे हो द चले से दिल नए तने जेयो पी को कुंगी बात है तने कौनसी बात चले से दिल नंचो जेबी जर का जी तेरे जेपा का कासल ता लोट आवंगी चिड़ से या ओ कोरंग के जरूरी को तने जुपी डा जेते भी चिले वर्षी बास या ता ठंडे को अनि डाटे कोर जो नेजी तने ची यो बारे तो तिंसान चल जाना ता तोहूं ते ही गुनों यार तोहूं का आ इतनी ही नहीं नोला यू बात नहीं चली आ इतनी तेजी देखो मिंगा जुपी डा जेट ने भी चिल लेवर शिपास यार 다 뒤에 놓나 양 나의 집배지다 집이 거니 쓰고시네 수용. 간데 요리 세들 메토 지체 준행유에 준행란은 롱규쉐 준행기는 랑보젤 준행시르는 추종시 준행리는 메토초 신그야가 라드뎀 준비힌라 샤창지 제제 준행 오차른지 근데 올라야 다도 지 뉴여바래 자위 챈다 베진데 데들 메토 지체 준행유에서야 니그놈의 준행세야데 나의 당보 아다 되니 오자된 바세 데시 나도 저기 이게 준행라 이제 나의 지보 처마지더니 빼지게 받던지 준행라는 롱기시 히비가서 준행라스 란데 아니 나이니 말리스야 롱기시에서 강나 쉬어서 준행라스 와 자위 열때 바세 근데 준행 기는 랑보 열리 히비 준행 기세야 시작 체 준행 싫은 초종기 준행 그 체도 준행 그 싫도 와 초종 아 되니 초종 규바다 땡겨 Jinhilin metal tune he because a metal tunesak, Kunte, Jinhim, Junghus. Then a hink yaga rap the den he because a yaga the kangi yaga yimba, then a hink yaga yimba, Hinda yaga yipa on jatem. Then if Jimby hing la shasan ki, say it is a shasan the canayopa, a Jimby hilayopa, Niji tempers. Then a jeje jinhing once and the jejis and Kazakan like Pambeni, or that jinhid, any Hajang and Zibundu. Then this is a digging on a cherry said. 나의 당분이 제바 말아 봐. 차상 같더니 배제도 집이 고니 돼요. 너처럼 아니 아 뒤에 집이까지 아 다들겠다 잔치 차려. 대인들 나의 제보 배제도 집아 탄데 다 공도 해봐. 근데 그 집이 자지 때문에 칠레비시 봤어요. 안 되게 놓고 싸대 봤다. 너 나서 배 강제 봐가 다들비 루지 걸 나의 제제 나야 그런 처음에 봐대. 마돌다 자갈 마. 대인들 다 나의 제제 나야는데 나야 좋던데. 다 디시 시즌 안서 키바 가히고 쿤루 메바 아니 그 서드 주의가 봤던데 이제 자원이니 아니 많이 봐. 근데 강그 건 희세들다 건데 해바나 용고 선다지 자원이 저때 아니 디레 집이 가진 주비 자지 되게 틀레시 봐서야 근데 그 용 콘텝 용 체대 왔다 내서 건다 송고여 봐. 어 되게 다 사히제도 그래스. 대엔 봐 연자 그 나의 인다 메지 체게 돼요. 아 근데 자가지 그 자용 운진다 봐. 근데 지라 빼깝니 Tendi chila yinji minji pa untun muntun zon la chen. Ani te magi pa. Pe rang la ya kono na ye ji ji na ya. Siya ji yue pa. Tendi yin pa yin zang. Ani na ye tangbo dan je pa te nyin to. Ta ngan so shetan ka jaga je na ye jo tong na. Tui ni xie ya pa yin na. Ani na ngan so kong di xie peke na ye tangbo ten ngo za ten pa se ya te. Ta na ye ji pa teni beta tabi lan chen pa je na. Ngan so pe rang ka thong ma yin pa ke na ye. Tendi par je na ye nyin pa ni ngo su na na ye dun pa ma re pa te. So te shetan ka ta jaga dan rin rabon rabon. को मिसे के चले से दिले अनि बाद जे जिक आ तने को छे यो यरो आ अनि के नय के चे मिसे वा तने देन बाय वा ता तने छा दि रेस वा ता नेसो दे चले से दिले गन सो नय को ने नि हि गि जिक जों ना छा दि आ तने इन दिले आ गन सो को ता आ कम दला ता कोन हि बा ना य खि बा लाला के तने नय तांबो दा जे बा नि दे आ अनि नय ता पा रेस आ ये डुबो दे सो नय छिन्यो पा रेस या तने दे पा दे सो ते अनि जागर तर कोर नए कि चें सबा यूं में लासो पाला को तीन ही बाये तेरे इधर ता सत्य इंगी नहीं थे ना अनि कोर कोर तो नहीं हाँ जिंसिंग ही जरे देवा तेरे चिया रेडियो रेस
1: तदा ची ची सिंबादे ना कांगे सुंदर लोची लिंची जे याना मंत्र अंजु लिंची सिंजर गैस हियर
5: ता तेंजे इंदी लो ता चंदनी गांजो बेला नए जे ये बिग ता योंजा जो लुटेने ये यांची ने अने नए दां चिचे ने ला अने मक्का से योपा मक्का ने चल तो ता ही जी काचे मोड़ चांदी हो ती इंदी लो को नए जे ये बिग लुटे ये यां ने अने ती थोड़ो ला ता नए दां चिचे ने ये मन ला पेंजो पारु ये मन ला अने मटे काचे एंडु अने गांजो जी जजी नए यिन ला चिचे माइन बाग मते रे वाता नए यिन ला चिचे माइन बाग मते यो कर यो बारे का यो बारे से दिल नए यिन ला चिचे माइन बाग मते योस ता कहाँ जा से दिल अने ता तें जो गोजा तें भी को मिंटे सो जाने जगी होश वाया ता पेचा जाना निमाही जुबी के जाता पे यानी निमाह के मिंटे लंगा रोज निमाही जुर वा तीन निमाह के जुबी जाता पे ते अने निमाह के तें जो गोजा तें मचर तीन दिन दे नए तांबो यिन्स 왜냐면 너처럼 이제 치체 애인에서는 치체 마인스 Citayana rangi ni ko ten ten mebar. Tindila ndachari se di ko ming rwa, ko nain tambo. Tindila ndatabla tsuenpayana, nain yinla, wa citay mahimbi mwari. Nain tambo te songa su, ming te su yana ndigir. Tine nyingbaji chari se di lo, citay yinla, nain mahimba ka matish. Ta citay yinla, nain mahimba ka kanyori se di lo, waya, tine larda ka che, chukjibo. Tine jindu ka che, jayang asam. Tine lhaji ka che, Chiche da nai nyinga yinbi gama tishe. Wata chiche yang yin la, nai yang yin bati. Ani kanyo re se di la. Wata nai jeg nang la, nai tambo de pa pupak. Ming te su pa pupi gita, lama ga nai dun di gana rigi re. Wata jie da kaya da. Woya, ta deso de chire se di la, nai yang yin la, ani che jang yin bati, chiche jang yin bati. Di indi la chiche da nai nyinga yin kente, wata deso gana nga rasun rigi re. Ta nai yang ma yin la, chiche yang ma yin ba, Tenyinga mainke de, gang ya sore ta, nga so mambo ya ya ta, teno lo pe na, yang ye ta. Tene saji ki yege changba, tene kaha kanga la sabi yege changba teso. O teso te chere se dile, ani, miyang, tre chang mare, citre chang mare, teso nae yang mare, citre na nae, kanya main pare. Oya, ten dile, citre da nae nye da, gondi heba na ye, nae je yue pika, yonra ji lu teni ye ya shina, nae da citre nye na ta, me ye, o zi yue wa, o ta teni chari yore. Oya, ta nda chere se dile, 那做的那。